राइट लेजी करीब करीब करीब करीब करीब करीब अगर लेजी चुको सुने मगी भी चीज का सरसा की चुकी ना सिरुआ नहीं चुके ऐसे में सुना सर हूँ आगे मुआगे चुको सुने ने एन उतुल ए यात ने ए इमित ने इमुआगे चुकीलान इन्हुरुआन एन गेबे बर्चा आइनोंगे चुके गोस्तने ने अगर अगेर करो इन्हुन गिमाजे सिगे आतिकी चीजे न्यानो नितंग ने बस टाटू 74 आज कंग्रेजुलेशन बिगड़ जिगा बा अगे एन नॉट टेकिंग ने बा 85,000 कंग्रेजुलेशन एनिंगुन ने गितु गोस्तो इन्दर ने अम्मा जी जितनो तो के नहीं मिटे न्याना एनी तक ने बस था ए टू ए 74 आज नितक एन ने बस था ए टू ए 74 आज यान ने गितु गोस्तो ने निजीनो तो ने गितु का एनिंगुने ने गितु का एनिंगुन ने गितु का अगस्तो इन्दर ने Chitanigi Tuga en Guni Kogilin Jongi Majigi Tuga Augustinani Giguni Tuga Enion 100,000 A Gimaji a Gigunin 100,000 and Orenoto Nenegane A Gimaji Gigunin 100,000 Any tongue was time a 274 Asia. Any tongue was tired, a 274 eyes. Gitaga to not any meeting on him. Kill it, digi to go stun and not another 100,000. Reply, digi t number 7. A digi t and number 7 get to go stun on him. A digi t no number 7. Kigun in 100,000. Good thing, Kilegame moot in your chigegi, Kungeteno legano. Yemen in Guni to Goston and not any meeting yoni. Amaje itiam get to Agoston and Ogiwe on not another 100,000. Arakanemu Kobati and not a Nungonga. Tigitit and number 7. Imagine Gogileje or Yat not another 100,000. Amaje get to get you not another star. A 274 age. Any annotated get to a ghost on any jagger to not any meeting on him. Reply ticket and number 7. Ago Lindin, Ion get to a ghost on any Kubin Divig, Akib Gondet, Kabilet again. All right, Kubin Divig, any young to ghost on any a Kabilet again to get on him. Agrabisik, not to Kissinia, so man is a message to meet in your to Goston name. A lady get to Goston, not to name it in your any tongue that was time a 274 age. Imagine it to Goston, a gogilage in 100,000 Agumagiri, Gagoroga, and you know, getting a leona. All right, you know, Tenegaliana, Banasirim get to get alone. Arai sogir noni tok sogir lagini eni gune gero mama jige gerchi sange nitong ne bosta 274 age kelenji gitu gosto ndani gitu ge enion mati ge gerchi sange imagine tigiti non gitu ge agosto nene imagine tigiti number 7 never 100,000 imagine gonye gitu not ne gitinge